0: नमस्कार ऑटो, मैं हूं मनोज
1: और मैं हूं शिल्पी
0: एंड दिस इज नॉट अ शो।
1: दिस इज नॉट अ शो।
0: पतझड़ है,
1: पतझड़
0: है,
1: पर कितना सुंदर है।
0: हां हां,
1: मतलब जो कलर्स हो रहे हैं ना, क्या मस्त कलर्स हो रहे हैं।
0: इतने कलर मैंने पेड़ पौधों पे मैं देखूंगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था।
1: एक्चुअली when you go to that windmill farm ऊपर, तो वहां से देखो कितने प्यारे रंग दिखते हैं। वैसे भी मतलब you know you go to summer hill उस तरफ दिखते हैं, you go to Massey University उस तरफ बहुत दिखते हैं, ब्रिज की तरफ जाओ वहां बहुत दिखते हैं, न्यू ब्रिज की तरफ। सो इतने ब्यूटीफुल कलर्स, यू राइट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ लाल हो सकते।
0: हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे को पेड़ पे पीच कलर दिखेगा
1: बिना फूल के। मतलब पेड़ पे कलर इज लाइक फॉर अस इट्स लाइक ग्रीन ब्राउन एंड कलर ऑफ द फ्लावर।
0: पत्तों की बात कर रहा हूँ।
1: हाँ
0: मैंने इसे कभी सोचा नहीं था। एंड

0: देयर इज दिस वो चेरी ब्लॉसम का पेड़,
1: हाँ हाँ पिंक,
0: हाँ तो नॉट ओनली चेरी ब्लॉसम का कलर अलग है, ठीक है, मतलब बहुत अलग है, बट उसके पत्तों का भी कलर अलग है.
1: या दैट्स ट्रू,
0: मतलब उसके पत्तों पे भी कलर है, बहुत सारे
1: पत्तों पे ग्रीन कलर है, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन.
0: हाँ, और अभी बिकॉज वो भी झड़ रहे हैं, उनका भी कलर येलो मरून ऐसे हुआ जा रहा
1: है. नहीं, वो तो है, बहुत ब्यूटीफुल है. साउथ आइलैंड में ना एक जगह है,
0: साउथ आइलैंड में बहुत जगह है,
1: मतलब एक जगह है जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं. एंड आई वाज देयर लाइक फ्यू इयर्स अगो, आई वाज देयर ड्यूरिंग दिस टाइम, अप्रैल मई में मैं वहाँ पे थी, और मुझे मतलब आई टुक सम फोटोज एंड आई फेल इन लव विद दोज फोटोज बिकॉज ऑफ द कलर्स. सो इफ समबडी आस्क मी व्हाट इज योर फेवरेट सीजन इन न्यूजीलैंड, आई ऑलवेज से ऑटम. आई नो मतलब समर भी है, बट ऑटम इज लाइक बिकॉज ऑफ द कलर्स, आई जस्ट लव ऑटम.
0: फॉर मी ऑटम हैज बीन लाइक वेरी शॉर्ट ऑलवेज.
1: ओके,
0: ठीक है, अप अंटिल
1: शॉर्ट ही होता है ना.
0: हाँ, मतलब शॉर्ट, मतलब इतना शॉर्ट कि मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि ऑटम एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, क्योंकि बीइंग इन मुंबई मेरे को इतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं था, या फिर मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया था. बट यहाँ पे इट्स जस्ट डिफरेंट. ओके, एंड पामी में देयर इज अ प्ले, देयर इज अ स्ट्रीट.
1: कहाँ पे?
0: पामी में देयर इज अ स्ट्रीट, एलमीरा स्ट्रीट.
1: ओके,
0: वो मेरा फेवरेट स्ट्रीट है.
1: अच्छा,
0: किसी ने मेरे को दिखाया था कि ये एक स्ट्रीट है, मतलब मैं पैकेज से जा रहा था, फ्लैटमेट के साथ जा रहा था, तो उसने मेरे को बोला था मैंने तेरे को एक जगह दिखाता हूँ. मैंने कहा ठीक है, दिखा मेरे को. तो ऑन द वे टू पैकेज से उसने वो एलमीरा स्ट्रीट से लिया.
1: अच्छा,
0: तो उसने मेरे को बोला कि ये वाला स्ट्रीट ना मेरा एकदम फेवरेट स्ट्रीट है.
1: अच्छा,
0: मैंने उसको पूछा कि क्यों, तो उसने बोला कि तू अब देखेगा तब तेरे को खुद पता चलेगा. सो दैट्स वन स्ट्रीट जहाँ पे दोनों साइड पे सेम पौधे, सेम पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, और वो दोनों साइड से ऐसे एक टनल बनाते हैं.
1: अच्छा,
0: ओके, ना द थिंग इज ऐसा तो बहुत सारी जगह,
1: बहुत सारे जगह
0: पे
1: ऐसा, तो इंडिया में भी काफी जगह पे हमने देखा.
0: हाँ, लेकिन ये वाले स्ट्रीट पे ना पता नहीं क्यों इट फील्स सो सिमेट्रिक.
1: ओह वाओ, हाँ,
0: दोनों साइड पे पौधे ऐसा लगते हैं कि इट इज सिमेट्रिक. एंड नॉट जस्ट दैट, इट कुड बी द ट्रीज, इट कुड बी समथिंग एल्स और वॉट एवर. हमेशा ऐसा लगता है कि जो पत्तियां हैं ना, दे आर ग्लोइंग.
1: ग्लोइंग,
0: हाँ, ऐसा नहीं लगता है कि सनलाइट इज पासिंग थ्रू द लीव्स, ऐसा नहीं लगता.
1: Wow.
0: ऐसा लगता है कि
1: वो becomes a canopy kind of thing.
0: It becomes a canopy.
1: Yeah.
0: और मेरे को नहीं पता कि वो स्ट्रीट में क्या स्पेशल है या फिर वो पेड़ों में क्या स्पेशल है, but it looks very nice.
1: जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड आई थी ना, तो मैंने क्राइस्टचर्च में लैंड किया था, एंड देन आई फ्लू टू वेलिंगटन एंड देन आई केम टू पामी ऑफ कोर्स. तो मैं जब पामी आई और बाकी जगह पे नहीं सोच रही थी यार, मतलब कोई जगह कोई पेड़ के पत्ते इतने साफ कैसे हो सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता होता कि ये लोग रोज सुबह पानी डालते होंगे, मतलब ऐसा ना पानी छिड़कते होंगे, करते होंगे. बट आई सॉ देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट इज द एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज सो क्लियर, इट इज सो क्लीन, इट इज सो ब्यूटिफुल. सो जो ग्रीन एंड क्लीन का जो है ना न्यूजीलैंड का, इट्स क्वाइट एप्ट.
0: जब मैं आया था, so that was the 17th of February.
1: वाह, डेट भी याद है सर को.
0: हाँ, डेट भी याद है. नहीं, एक्चुअली सॉरी, 15th of February.
1: अच्छा.
0: सॉरी, 15th of February was the day, and 17th of February was the first day जब मैं यूनिवर्सिटी में एंट्री किया था. मैं ये मेन रोड से एंट्री किया था, जिधर वो लेफ्ट साइड पे
1: स्टोन
0: पे लिखा हुआ है, मेसी यूनिवर्सिटी, वो वाला रास्ता. ये एग्री सर्च के

0: अपोजिट वाला, वहाँ से मैंने एंटर किया था. तो दैट वाज द 17th. बट 15th को जब भी मैं पहुँचा था, तब जस्ट लाइक यू मैं पहले क्राइस्टचर्च आया. ठीक है, क्राइस्टचर्च से कलेक्टिंग फ्लाइट था मेरा पामी का.
1: अच्छा, तेरा सीधा पामी.
0: हाँ, तो मैं क्राइस्टचर्च पे उतरा और जैसा कस्टम्स क्लियर हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पे आया मैं. ठीक है, फिर मैंने बोला कि कनेक्टिंग फ्लाइट किधर है, तो आई हैड टू गो अपस्टेयर्स. मैं ऊपर गया और मैंने बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता. मेरे को बहुत भूख लगी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहाऊं. मेरे को लग रहा था कि मैं अभी अभी मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, अभी मेरे को कुछ खाना है और मेरे को सोना भी है. बट मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ना वॉशरूम देख रहा हूँ, ना कुछ भी देख रहा हूँ, ना मैं कुछ खाना देख रहा हूँ. मैं पहले जाके अपने गेट पे जाके बैठता हूँ. सो इट वॉज अपस्टेयर्स एक लेवल पे, और वो जहाँ पे मेरा गेट था वो है मतलब टर्मिनल में एक गेट है जहाँ पर एक ऐसी फ्लोर टू सीलिंग ऐसा ग्लास है. Okay. और वहां से आपको एयरप्लेन दिखता है.
1: I know.
0: ठीक है, रनवे दिखता
1: है. Yeah, you can see that.
0: हाँ. बट मतलब ऐसा ना वाइड नहीं था, इतना एक्सपांस नहीं था, वो पतला सा ही था. और तब हो रही थी बारिश, ओवरकास्ट था, बारिश थी. और तभी मेरे को पहली बार लगा कि मैं ऐसे जगह में आया हूँ जहाँ पे वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ओवरकास्ट रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा ग्लूमी उमी सा रहता है.
1: ओह माय गॉड, दैट इज डिप्रेसिंग.
0: हाँ, मैंने बोला कि यार मैं अभी मतलब 8 घंटे पहले, 8-10 घंटे पहले मैं चेंगी भी था. ठीक है, जो मजे किए मैंने एयरपोर्ट बटरफ्लाई देखे, पॉड्स देखे, टर्मिनल देखे, जूल देखा, खाना खाया, घूमा मस्त. और सनी, एवरीथिंग वाज सनी. फिर मैंने एयरपोर्ट पे ये नज़ारा देखा, वेदर पे. मैंने बोला कि ओके, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो सनलाइट ग्रीन और वो सब कुछ है ना, वो इधर कुछ दिखने वाला ही नहीं. इधर मेरे को सब कुछ ग्रे दिख रहा है, अभी मेरे को सब कुछ वाइट, ग्रे, ब्लैक यही दिख रहा है. कोई अगर मेरे को तभी कहता कि तेरे को ये जो सीन दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट वन पैलेट, दिस इज वन जस्ट वन
1: पैलेट, वन पैलेट करेक्ट,
0: और तेरे को इतने पैलेट मिलेंगे कि तू खुद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, मैं शायद नहीं मानता उसको. बट आई एम रियली हैप्पी कि
1: मेरे
0: हाँ कि मेरे को ऐसे देखने को मिलता है. जब भी रेंगेटी की स्ट्रीट से अपन फील्डिंग की तरफ जाते ना,
1: हाँ.
0: तो जब भी शाम के टाइम में सनसेट दिखता
1: है, ओहो हो,
0: तभी वो रास्ता देखने का
1: बहुत अच्छा है. वहाँ पे कभी कभी ड्राइव करने में इशू होता है क्योंकि सन एकदम सामने आ जाता है.
0: हाँ. But then you have to observe the colors.
1: I know. Beautiful. और एक और बात बतानी है मुझे तुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक गाना चला दे पहले.
0: अच्छा. आज ओके ठीक है, मैं शुभ का गाना बजाता हूँ.
1: किसका?
0: शुभ.
1: शुभ.
0: शुभ.
1: हाँ.
0: आर्टिस्ट है.
1: आर्टिस्ट है.
0: पंजाबी गाने गाता है.
1: ओके, बजाइए.
0: ठीक है, उसका गाना बजाता हूँ. आई थिंक फेल फॉर यू. ठीक है, चलो सुनते.
1: फेल फॉर यू.
0: फेल फॉर यू.
1: वाह, ये तो इंग्लिश के आर्टिस्ट लग रहे हैं.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कुछ पंजाबी गानों का ये इट्स अ थिंग कि
1: एक लाइन इंग्लिश की गुस्सा दो.
0: वो नहीं, वो तो होता ही है. बट गाने का टाइटल इज इंग्लिश.
1: अच्छा. बट गाना पूरा पंजाबी.
0: गाना पूरा पंजाबी है.
1: ठीक.
0: जैसे करण औजला का गाना, गाने का नाम है, गाने का टाइटल है बॉयफ्रेंड. बट गाना शुरू होता है अबाउट अ गर्ल बीइंग सैट डाउन बाय हर पेरेंट्स, और वो उसको लड़कों की फोटोज दिखा रहे हैं.
1: अच्छा.
0: कि ये पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या. एंड द एंटायर सॉन्ग इज दैट गर्ल सिंगिंग टू हर मदर एंड फादर एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव

0: I like someone.
1: अच्छा
0: इसीलिए गाने का नाम है boyfriend.
1: Boyfriend.
0: ठीक है English. And then then Shubh Gap. There's one song. मुझे पसंद है. मुझे काफी पसंद है. गाने का नाम है One Love. लेकिन उसमें गाने का इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है उसमें.
1: अच्छा एक प्यार है ना उसका.
0: हाँ मतलब
1: पर कुछ तो होगा ना एक प्यार से रिलेटेड
0: गाना है. हाँ, मुझे पता नहीं मीनिंग पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं अभी तक.
1: अच्छा
0: बट इट्स सो दैट्स द ट्रेंड. सो ये गाने का नाम है Fell for You.
1: Fell for You. ठीक है

0: on it. So that was the song.
1: That was the song.
0: That was the song.
1: Haan, but I understood why it's called Fell for You.
0: Okay. ठीक है मेरे को अब तक गाने का मीनिंग नहीं मालूम बट मतलब बट आई अंडरस्टैंड
1: वो बोलता है ना कि मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ द लिरिक्स काइंड ऑफ हिट द सेम सेंटेंस
0: राइट अभी जैसा वो एबी डिलन का गाना ठीक है एक्सक्यूजेस
1: एक्सक्यूजेस
0: ठीक है इंग्लिश गाना नहीं है वो ऑलराइट बट गाने का टाइटल एक्सक्यूजेस है सो है ट्रेंड है ये
1: ओके कूल अब मैं तेरे को जो बात बताने वाली थी हाँ तो जब मैं पामी आई थी तो उससे पहले मतलब सबसे पहले व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड इन 2020 आई लैंडेड इन क्राइस्टचर्च सो व्हेन आई वाज लैंडिंग इन क्राइस्टचर्च लिटरली तो मैंने प्लेन से आप देखते हो ना कि कैसा लग रहा है अब नई कंट्री में आया
0: हूँ मेरे को विंडो सीट मिला नहीं था आई हैव नो आइडिया
1: अच्छा मेरे पास विंडो सीट था तो मैं देख रही हूँ कि कैसे है नीचे यू नो सब कुछ मुझे लिटरली आई कुड सी अ रिवर एंड द रिवर वॉज लिटरली ब्लूइश और लिटिल बिट ब्लूइश और ग्रेइश एंड इट वॉज सो क्लीन आई कुड सी फ्रॉम द टॉप इट वॉज सो क्लीन वाइका मारीरी
0: वीव पैटर्न रिवर
1: यस वीव पैटर्न रिवर
0: उसके ऊपर है ना रिसर्च हो रहा
1: है अच्छा
0: हाँ
1: ओके
0: यू गो ऑन फिर मैं बताता
1: हूँ ओके तो रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे करके और आसपास बहुत ब्यूटीफुल पेड़ है फेब्रुअरी का टाइम है और हम ऐसे लैंड करें तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये तो पेंटिंग है हम पेंटिंग के अंदर लैंड कर रहे हैं मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल
0: मेरे को इसीलिए पता नहीं है एज इन उस टाइम पे मेरे को इसलिए पता नहीं चला था बिकॉज मुझे सीट मिली थी एकदम लास्ट कोपचे की

0: जिसमें विंडो नहीं था, तो मैं एकदम ऐसा घुट के बैठा था. मैंने बोला था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नींद आ रही है. जब मैं प्लेन में घुसा था तो मेरे को सीट पता चली. मेरे को तो लगा था कि हाँ ये सीट कुछ ज्यादा ही क्लॉस्ट्रोफोबी लग रही है. बट मैंने बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने वो एसी का वेंट अपनी तरफ किया, जैकेट लिया और सो गया. मैं फिर बाद में कब उठाया, जब ही अनाउंसमेंट हुआ कि अभी लैंडिंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि बगल में जो बंदा बैठा था वो भी मोस्ट लाइकली वो भी इंडियन ही था. अच्छा. लग रहा था मेरे को. तो वो पता नहीं कुछ तो घिचमड़ घिचमड़ कर रहा था. तो उसके हिलने डुलने से मैं उठ गया था.
1: अच्छा.
0: एंड मेरे को पता था कि हाँ अभी उतरने का टाइम आ गया अपना, अभी अपन उठते हैं बस. सो आई डिड नॉट सी द लैंड वाइल्ड लैंडिंग.
1: ओके. कभी तेरे साथ ऐसा हुआ, ऑफ टॉपिक, बट कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तेरे को एयर होस्टेस उठाने आई है कि बस अब खत्म हो गई है? ओके.
0: उतना कभी ऐसा हुआ ही नहीं.
1: मेरे साथ दो बार हुआ ऐसा. एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट में, एक नॉन डोमेस्टिक फ्लाइट में. तो आई वेंट टू अ कंट्री इन अफ्रीका. आई वेंट टू केन्या. या एंड आई वाज कमिंग बैक एंड आई वाज सो टायर्ड बिकॉज आई वॉज सो बिजी एंड मूविंग अराउंड. मैं काम से गई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टायर्ड हो गई. तो जब मैं आई तो मतलब आई वॉज स्लीपिंग कि फ़ोन बंद है, सब बंद है, सो जाओ. और आई थिंक मेरे को ये भी नहीं पता वो खाना कब लेकर आई और कब लेकर चली गई. लाइक आई डिड नॉट इवन टेक द फूड बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग. लाइक मतलब प्रोबेबली आई वॉज स्नोरिंग एंड स्लीपिंग मस्त एकदम. विंडो सीट मिला था, मैं सो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ. और दिल्ली में लैंड हो गया प्लेन.
0: अच्छा.
1: मतलब वापस आ रही थी, वो लैंड हो गया एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो लैंड हो गया. फाइनली एयर होस्टेस हैड टू कम एंड टेल मी कि
0: मैडम उठ जाओ.
1: हाँ, मतलब मैंने देखा मेरे आसपास की सीट खाली हो रही है. मतलब दो चार लोग थे प्लेन में, वो भी जा रहे थे. तो यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया.
0: नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. प्लेन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ.
1: क्योंकि आई ऑलवेज पुट माय सीट बेल्ट्स ऑन. आई कीप पुटिंग माय लाइक कीप माय सीट बेल्ट्स ऑन ऑलवेज. तो ऐसा है नहीं कि मुझे दोबारा से लगाने की जरूरत पड़ेगी बट टेक ऑफ हो रहा है या फिर लैंडिंग हो रही है. तो लगा हुआ है, मैं सोई हुई आराम से मस्त एकदम.
0: गोइंग ऑफ टॉपिक, मेरे को कल एक भलता सपना आया. पता है
1: भलता? व्हाट इज भलता?
0: भलता मतलब अजीब.
1: अजीब क्या सपना आया?
0: ओके. सो जब भी वो मार्वल यूनिवर्स का जो ट्रेंड था ना, वो जो फेज था ना मार्वल यूनिवर्स का, आयरन मैन एंड दिस एंड दैट, वो सब हल्क वल्क सब कुछ, तो हम लोग मार्वल मूवीज रेगुलरली देखते थे. मतलब मार्वल मूवी देखने का ही देखने का. ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरी मूवी नहीं देखते थे. हम दूसरी मूवीज भी देखते थे. हम अच्छी मूवीज देख
1: भाई की मूवी को छोड़ के तुम सब देख रहे
0: हो. अरे भाई की मूवी भी देखी हम लोग ने.
1: ओ
0: हाँ, क्योंकि तभी कुछ और था नहीं.
1: अच्छा.
0: और हम लोग शिफ्ट हो गए थे. अरे मैं चला गया था बदलापुर, वो आ गया था अम्बरनाथ. एंड वी वर लाइक यार इधर कुछ है भी कि नहीं है कि हम लोग खाली मतलब जाके नदी में बैठने गए. तो तभी टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई थी.
1: टाइगर जिंदा ये कौन सी मूवी है?
0: भाई की मूवी. नहीं, हाँ टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई.
1: एक तो टाइगर तो आई नो.
0: हाँ, तो टाइगर जिंदा है, उसका सीक्वल है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि टाइगर में दिस वाज अ क्लिफहैंगर कि टाइगर टपक गया.
1: अच्छा, टाइगर मर जाता है.
0: हाँ, बट दैट वाज अ क्लिफहैंगर.
1: ओके.
0: तो उसका क्लिफहैंगर, तो उसका सीक्वल आया टाइगर जिंदा
1: है. जिंदा है, जिंदा है,
0: जिंदा. एनीहो, सो दैट was the time when we would wait. और तभी ऐसा regular Marvel movies आती थी. So this was kind of a highlight for us.
1: अच्छा.
0: तो मेरे को सपना आया कि Marvel का कोई नया picture निकला है.
1: अरे वाह.
0: और मैं और मदन हम लोग जा रहे हैं अभी picture देखने को. और

0: मैं खड़ा हूँ मेरे घर पे इधर न्यूजीलैंड में,
1: अच्छा,
0: और मैं मस्त में बाहर देख रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे क्या मस्त कलर है आज क्या मस्त कलर दिख रहा है आसमान में और मैं ही बोल